0: बोलो
1: नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो
0: नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी
1: कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी बोलो
0: कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी
1: बोलो कृष्ण कृष्ण

बल नास्तिक बुद्धि है चे गुरुवन्ननु श्रद्धयु पोये भक्ति किं स्वस्ति सनातन प्रभकु स्वस्ति वहिंचेडि।